0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
4: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
6: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
5: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
8: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
7: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग

0: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
3: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, The Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
5: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
3: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
6: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
3: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
8: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
3: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. U.S. forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic. The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
9: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remain stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-brokered ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
3: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in five districts till 9th of June. More from our correspondent.
10: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasargod in Keralam. Six districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining three districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: Meanwhile, the weather agency predicted a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quotes the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagul.
3: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: zoram mei cherar ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha lel ngeng pui to chong ania chu ti chong chu tun chum ram ngai hla hun lel ngeng pui to chong le ro sang lian ti zai kan ngai thak ho thei chu lo ni ta a akashwani aizol atanga puan chu ani tuna chuan hindi lesson hun kan manganga nancy lel hung chungi le no pang ten hun an ron mang don ani lo ngai thlang u
1: tun chum hindi lesson hun a chuan tun lai borok meldewin damlo na chungchaanga inbiakna kanzir ho don ni ngun dewin lo ngai tha ula zona ka zo le don cheunia o chanang o ahma sabera chuan mi in idamem anti chuan hindi in aap kaise ho anti chhin ni aap kaise ho anti chawle
2: aap kaise ho
1: आप कैसे हो तिखा इदम एम तीना नि कदमे तीना चु मे ठीक हो ती इन छांग ओ मे ठीक हो ति चु कदमे तीना नि मे ठीक हो हंति ते उले
2: मे ठीक हो
1: मे ठीक हो कदमे तीना नि ओ इदम लो लाय लो नि चुआन मे बीमार हो ति तोरनि चुम योम ज्या चु kadam lo tina ni bimar chu dam lo tina ani a me bimar hu anti te ule
2: me bimar hu
1: we ka sei le ang
2: me bimar hu
1: o e zwali dam lo ti kha hindi in eng tin yan sei kha
2: bimar
1: sangi kha ए कदम लो तिखा हिंदी इन एंटिंग हन सोई तेले
2: मे बीमार हु
1: मे बीमार हु तिखा दिकलि चुआन इशितलान लाय अलोनी चुआन मुझे सर्दी जुकाम है ति तुरनि चुमी ओमजिया चु कशितलांग तिनानि मुझे चु का तिनानि मया सर्दी जुकाम चु शितलांग तिनानि मुझे सर्दी जुकाम है इंतियांग मुझे जुकाम है रिंगोत ते पो अमन थे खखा अपनी खान सर्दी पो जुकाम पो खा अमन वेवे थे नि तूना मुझे सर्दी जुकाम है तियांग ले
2: मुझे सर्दी जुकाम है
1: ओ तूना लूते शितलांग तीखा हिंदी नेंगे खा
2: सर्दी
1: छाई शीतलांग सोई ने थुमल तंग अनमन थौ खा सर्दी ती लो जो खा एंगे निखा
2: जुकाम
1: थ्यामले मई कलु अना ती कंजिर बेले अंग ओ कलु अना कन ती दोन चोन मेरे सिर में दर्द है कन ती अंग सिर चु लु तीना अन्या दर्द चु ना तीना नि तू ना मेरे सिर में दर्द है तियांगले
2: मेरे सिर में दर्द है
1: सेले आंग
2: मेरे सिर में दर्द है
1: ओ ज्वाली ना तीखा हिंदी इन एंगे खा
2: दर्द
1: दर्द तीखा दिकनी तू ना इशितलान वांग खान इशोक अलोना ताआ कशोक अना इति दोन चुआन मेरे गले में दर्द है तिले में तुरने गले चु शोक तिनान्या दर्द चु ना तिनखा इशा तो खा इति चुआन कशोक अना इति दोन चुआन मेरे गले में दर्द है ति तुरने मेरे गले में दर्द है ति अंगले
2: मेरे गले में दर्द है
1: वे खतले
2: मेरे गले में दर्द है
1: अच्छा ए इन थ्याम लुक तो के तिखाम शितलांग ते लुना ते शोकना ते सोईदान इन थ्याम ता आ मानी ना सोईदान कन थ्याम ता आ तुना चुआन कन छानते मो मिदंग कन सोइदोन चुआन मुझे सर्दी जुकाम है इन तीना खान अशितलांग इन तीदोन चुआन मुझे

0: aya use kan mang to anga tichuan use sardi zukam he in ti thung don ani chutiang bukin alu ana in ti don chuan mere aya khan uske man to tur ani a chuwangin uske sir me dard he ti tur ani ashok ana ti khan se don chuan उसके गले में दर्द है तिले मई तुरनी कशोक अना इंती खचवान मेरे गले में दर्द है इंतिया अशोक अना इंती दोन चवान उसके गले में दर्द है तिले मई तुरनी मेरे आया खान उसके मन तो तुरनी ओ ओले सांगे बेथुंग इच्छानु लुना इसोई सक दोन चवान इंतिया सोई तुरंगे खा
1: उसके सर में दर्द है।
0: ओ, उसके सिर में दर्द है तीतुर अनि अनि छाई इच्छानु शितलांग इसोई सक्दो ना अशितलांग इखा हिंदी इन हरसोई बेतेले
1: उसे सर्दी जुकाम है।
0: अशोक अना इखा लूते खान हरसोई बेसे हिंदी इन
1: उसके गले में दर्द है।
0: उसके गले में दर्द है दिखा दिखा नहीं अशोक अना दिना नहीं इंतियामले में तू नाचुआन का इंतिपेम ती गंजिर ले अंग का इंतिपेम ती चू हिंदी इन मुझे चोट लगी है दी तुरनी मुझे चोट लगी है हंती ते उले
1: मुझे चोट लगी है,
0: सही ले अंग
1: मुझे चोट लगी है।
0: ओ अधिके तू ना चुआन एंटीयो ने दंग दे हन मांग दोन ता इला डॉक्टर रोन कंगाई इति दोन चुआन मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है तितुरनी मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है तितुरनी आ सलाह चू रोन तीनानी ओ सलाह रोन तीनानी आ मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है हंती बेटे उले
1: मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है।
0: वे खत से ले आंग ओ
1: मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है।
0: ओले तूना चुआन इदम लोना वांगिन दम दोई ना इकल दोन ता आ खोंगे कल दोन आप कहाँ जा रहे हो करोंती अंगा दमदोई ना ककल दोन मैं अस्पताल जा रही हूँ इंतियांग ओ हेलाया ह्यानिन मैं अस्पताल जा रही हूँ एमो मैं अस्पताल जा रहा हूँ दिखा अमन थे वे नी मेथिया इनी चुआन रही खमन तुर अनी आ मिपा तान एरो चुआन रहा खमन ले मै तुर अनी तू ना चुआन मेचलांग इन अवांगिन मैं अस्पताल जा रही हूँ कंतियांग ओ दमदो इंचू हिंदी इन अस्पताल अनि ओ अस्पताल मैं अस्पताल जा रही हूँ तिरौले
1: मैं अस्पताल जा रही हूँ।
0: खोंगे इकल दोन आप कहाँ जा रहे हो कतिया दमदो इन इकल दोन चुआन इंतिंगे मिंग छानंगले
1: मैं अस्पताल जा रही हूँ।
0: जुआली हिंदी इन दमदो इन एंटीन यान सोई खा
1: अस्पताल
0: लूते नंग दमदो इन आ ककल दोन तीखा हिंदी इन हन सोई वे तेले
1: मैं अस्पताल जा रही हूँ।
0: इन थियाम लु तुके तिचुआन दमदो इन इकलता आ डॉक्टर इन दमदोई ले तुर अलौ चोता चे आ दमदोई दोरा चुआन इवकल ता दमदोई खा इव ले दु तानी हेंग दमदोई ते ही इन नेम इवती दोन चुआन क्या आपके पास ये दवाइया है ती तुरनी दवा चू दमदोई ती ना नी आ दमदोई ते अनि चुआन दवाइया कंतियांग क्या आपके पास ये दवाइया है तेरा उले
2: क्या आपके पास ये दवाया है?
0: दवाई चु दम दोई ती नानी ले तुना क्या आपके पास ये दवाइयाँ है तियां?
2: क्या आपके पास ये दवाइयाँ है?
0: सांगी दम दोई था हिंदी इन एंगे खा
1: दवा
0: ओ दवा पो अति थे या दवाई पो अति थे अनि दम दोई सोइनान दवा ले दवाई खा मन थे वे वे अनि ओले वे खतले तू ना इनवाइन हैं दम दोई ते ही इन नियम दिखा हिंदी इन हंसोई ले ते उले
2: क्या आपके पास ये दवाया है?
0: इन थियम तो ले मैं दिखान इन दम लो नते इन सोई थियम तो आ दम दोई इन ले दम दोई ते पो इन सोई थियम तो दो ने अ तो नान इन नो ले थोक थोक अंग ओ मिजो चोंगिन कसोयंगा हिंदी इन लो सोई वेथुंगंग ओ हिंदी खान इदा मेम दिखा एंटिन गे निखान सोई खा
2: आप कैसे हो?
0: आप कैसे हो दिखा ए आदिकनी कदमे दिना खा एंटिन गे खा
2: मैं ठीक हूँ
0: सोई ले अंगले बेखात
2: मैं ठीक हूँ
0: कदमे दिना खा जो मैं ठीक हूँ दिखा नीले कदम लो दिना खा
2: मैं बीमार हूँ
0: मैं बीमार हूँ दिखा दिखा नी अनीले पकात कशितलांग दिखा इंटीनी अंसे खा
2: मुझे सर्दी जुकाम है
0: बेकात सही दे आं
2: मुझे सर्दी जुकाम है
0: अधिके कलू अना दिखा हिंदी निंदिन ये सोई तो खले
2: मेरे सर में दर्द है
0: सोई ले आंग
2: मेरे सर में दर्द है
0: अधिके ज्वाली ना दिखा हिंदी खान इंगे खा
1: दर्द
0: अधिके सांगी खा दम दोइन दिखा हिंदी खान इंगे निखा
1: अस्पताल
0: अतिके तू ना हिंदी सुविधा का जोर ले अंचो ओ डॉक्टर रोन कंगाई दिखा हिंदी हन सुई ले ते उले जवाई खान
2: मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है
0: मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है दिखा अधिकनी तू ना कजोत ले अंचो ओ थुमल सांगी दम दोई दिखा हिंदी नेंगे निखा
1: दवा
0: दिखा अधिकनी ज्वाली दवा ती लोखान दम दोई सोई न पकत खा एंगे निखा
1: दवाई
0: अधिके दवा ती पो अमन थे या दवाई ती पो खा अमन थे अनि ले ए अनि ले हेंग दम दोई ते ही दो रखा निवले दो ना हेंग दम दोई ते ही इन्ने यम दिखा इंटीन ये निखा इंद्र अरवालिन जवाइन सोई लियांग ओ
2: क्या आपके पास ये दवाया है
0: वे खत सोई लियांग
2: क्या आपके पास ये दवाया है
0: ओ अच्छा ले मैं इंतियाम तो ले मैं दिखा जवानिन इन दम लोग पे इन सोई थियाम तो अंग तिरो ले दिखान तुन्चुमतान जवान kan du to pho tanga kan zir te kha in lo mang chang ka yanga si a jing in lo tum do nia o tikhan in next lesson a kan in hule theu do nia ule
3: Well, now listening to the Western music again, and in this segment, we're going to listen to the song of Black Eyed Peas, Jonas Brothers, and Destiny's Child. And to begin our segment, let's listen to the song called Survivor by Destiny's Child.

0: multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय

0: अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
4: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
7: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हे ही आकाश वानी आइजोल नि तुना चुआन चंचिन थार मिजो चंगपुआन इलोंगाई थांगउ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विशिष्टता बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर

ज्यादातर हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और

आदमहाता खजा बल था रे थैन था आगे गा सपे मोल की खाइब खा आरसी बुकिया अमला आगे गा सपे वो सब चा वारा रोना के बचाने रात बल था अच्छा आदमहाता आरसी बिल इपिता छाजो रात बल था आदमहाता मिजी दो आदमहाता मोल की खा सुवा

छाजो रात बल्ला आयंगा सपदंत थैंग सपद वस्तु पनजु छ आरसी बेलाजिन द पार्टी जु चाइता अदमहा छ खसा खसा गल छौ पथाइले द बल्ला निखि ओपिता बेलाजिन द पार्टी तोता अदमहा मिजु दोता वन खि खा हिसुवा

0: उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्म स्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil.

0: अतः कहूँ मने चरका संहिता ले सुश्रुता संहिता ते ही कुंभी सी सांख जंगा टंगा बी सी जंगा इंकार वेलमी नियंग आई थे अनिया चरका संहिता बीक ही कछुंग दम दोइलम बीक जिरनले तुनलाई टोंग कम थकिन बैलेंस डाइट कंती ही अतेला हे बागा हेन दम लो एन कॉल टू डॉक्टर ले नर्स ती मेला रम मुला टंगा दम लो एन कॉल टू ते ती दान तुर जोंग जोंग ते हे चरका संहिता बीका हियान अतेल अनि हेंग ले खबू पतक पनि चरका संहिता ले सुश्रुता संहिता बा का हियान रम हुलदम दोय चंचिन ले अजिर नही हेंग अष्टंगा सरंगा अष्टंगा हृदयम मदाफ निदियन सरंगदर संहिता बा का बव प्रकाश बुआते मुथेन ओमबक अनि
1: अगर जो नोट लिया हंकल ताजे लीला आयुष ओमजियाले हेमिकोंगा सरकारी मालाग न चंचिनते मिलोशिले थे यंगम
0: थे तेरे में आयुष ही राम हुल दम दोएले दम लो एन कोल ना लम तोए ती ना अनिया आयुर्वेदा योगा एन नेचुरोपैथी उनानी सिदा एन होमियोपैथी ती ना अनिया अलम तोइन आयुष ती अलम अनि ती ना अनि बेरचु आयुर्वेदा कंती चुआन मा खो सांग तातो इंडिया रमिना निम नाले थाई बुल मंगा दम लो एन कोल ले बोय पुई दान अलो ने तो दान ती ना खा अनि मेया योगा एन नेचुरोपैथी कंती चुआन श्रीसेल ना अताना तक्स सोय जोई नले चीन दान था ती ना अनिले मेया उनानी ही मान लाई ग्रीको अरबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ती अनि आ ओम जिया चुआन मान लाई अरब हो दम दोई ती ना अनि बेरचु हेंग बागा हियन सीधा आ ओम ले आ सीधा ही इंडिया छिम लम साउथ इंडिया कंती मई हविन मा खो सांग तातवा अनमा निपुआला दम दोय अनलो सियम छुआले अनलो मु छुआ सोइना अतानक मन अनिया हेंग बागा हियान होमियोपैथी ती ओमलिया होमियोपैथी ओम जिया छु दम लो एनकोल ना ताना मिथियम तेना दम लो नतना एनजुई चुंगा दम दोय अनचो पोलती ना अनिलिया चु चु आयुष ती अलोनिता अनि सरकार लाई पुई हियान इंडिया टुअल ट्रो रम मुलदम दोय हि अंगाई पोय मो एम एम आ कुमसांग खज को सम को पंगा खान डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होमियोपैथी चुदिन अनिया हे हि अलम तोइन आईएसएमएनएच टी मैथिन अनिया तिचुआन हुन अ लोकल जेला कुमरिया नु आचुआन आईएसएमएनएच चु डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी उनानी सिदादा एंड होमियोपैथी आयुष ती इन अमिंथाक अनिलिया हेमिन हु कुमसोम पखत नुवा नोवेम्बर सांगनि सोम पली कुम सांगनि सोम पली नोवेम्बर निकुआ अलोनी मे चोन हे डिपार्टमेंट हि हुंगजाव जो का सीएम अनिया मिनिस्ट्री आ हान काइनि इन वइन थंग हियान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ती अलोनी ता अनि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलोपियन छुआ ता खा चोन थिल छिन छिया तक तक पखत ओमा कुम सांगनि सोम पली वे खान National Ayush Mission chu tran ania he mission hi wengkhang hian kumsang ni sompali ve khan National Ayush Mission chu tran ania he mission hi wengkhang hian amhalakna India Ram State thang thang a tur ala omani
1: beng war thak le mai ani le ram mul dam doi India Ram atanga thon chua chan chin lam phi min lo shut sak le ta che
0: India Ram ina kumsang ni sompali samni panga sarkar ta tangka kuma रम हुल दम दोय अ थन छुआ सु जोंग हि यूएस डॉलर मक त दोय सरु समरियत परियत ले नुय समरियत पकवा अंग छुत अनिया हेमि मा चि कुमसांग नि समनि बथुम समनि पलिया इंडिया इना रम हुल दम दोय रम दंगा अ थन छुआ जात लु जोंग हि यूएस डॉलर मक त दोय सरु समंगा पखत ले नुय सोम पसरी अंग छुत अनि बोक इंडिया रम हि खवेल पुम हुआ पंगपुआ रम हुल दम दोय लमा थन ल न सबे रम ले ram danga thon chuak na saber ang hialangai ania ministry of ayush noya hian hemilam boi pui tu tu din ani a aminga ayush export promotion council ayush excel ti wo ania ayush export promotion council hi sanghi somhi panhi april tha khan prime minister narendra modi chuan atlang zara e promotion council hi ministry of ayush baka ministry of commerce and industry nen अनि नेतोन रेंगा कुमसांग नि सोमनि पथुम सोमनि पलि सरकार तंग कुमछुंगा रम हुलदम दोय रम संग संग थोन छु जिंगा यूएसए थोन छु छु

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। सविता श्री भास्कर ने भी महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। केएल राहुल और कप्तान गिल के शतक से पहले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। श्रेयस अय्यर होंगे टीम के नए कप्तान। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला माया च्वालिंस्का और मीरा एंड्रीवा के बीच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली होंगे आमने सामने। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी।

तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माइंड गेम शतरंज से, जहां प्रज्ञा नंदा और सविता श्री भास्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता

0: टा में प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार है कि किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रज्ञानानंदा को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शह और मात के खेल में कल 10वें और आखिरी राउंड में प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानानंदा ने बीच के गेम में कीमर की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर 45वीं चाल में जीत हासिल की और टूर्नामेंट को 5 जीत 2 हार और 2 ड्रॉ से 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया। उनके दोनों ड्रॉ मैचों का फैसला आर्मागेडन गेम में हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। दुनिया के पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी वेस्ली सो ने आखिरी राउंड में अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 17 अंकों के साथ समाप्त किया। उनके खाते में 2 जीत और 8 ड्रॉ रहे, जिनमें से 6 आर्मागेडन मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। 10वें राउंड में वेस्ली सो ने 1.5 अंक जुटाए, जबकि फिरोजा सिर्फ 1 ही अंक हासिल कर सके। अलीरेजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो इस टूर्नामेंट में 2 बार आर प्रज्ञानानंदा से हार गए, 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 मैच जीते, 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले। कीमर 11 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के मौजूदा क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश 1 जीत 5 हार और 4 ड्रॉ से 8 पॉइंट्स के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रहे। फाइनल में सबका ध्यान प्रज्ञानानंदा पर था, क्योंकि वो ओवरनाइट लीडर वेस्ली सो से आधा पॉइंट पीछे थे। वेस्ली सो के फिरोजा के साथ शुरुआती ड्रॉ पर सहमत होने के बाद वो आगे निकल गए। उन्होंने बीच के गेम में मिली बढ़त को कीमर पर एक शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने नौवे चेस में शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। छठे राउंड के बाद प्रज्ञानानंदा अंक तालिका में छठे और आखिरी स्थान पर थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की और इस दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और अंतिम से पहले वाले राउंड में अपने हमवतन डी गुकेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की। इन जीतों के बूते वो खिताब की दौड़ में शामिल हुए। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार था कि किसी भी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया हो। मैच के बाद प्रज्ञानानंदा ने फाइनल के अपने अनुभव को साझा किया।
2: Yeah, I'm very happy. I didn't expect it when I lost 2 games in a row, but I think I was also playing with lot of control in the last 4 games and I mean things are also just going my way, so obviously very happy. Didn't do anything special, but I mean the one main thing is that just to keep some time in reserve and not get down to seconds, because yeah, it's basically like tossing a coin when you're down to seconds. So that's something I improved in my play. Like I was playing a little bit faster. I was having time advantage in almost all like the 4 games. And then, I mean, I think overall my quality was good throughout the tournament. I was getting good positions even in the first half, but I was just not converting them. So once I started to have some time, I think it started to go my way.
1: World number 1 Magnus Carlsen ne maujooda world champion D. Gukesh ko hara kar apne gharelu tournament ko jeet ke saath khatm kiya. Munish Sharma, Sports Camp.
0: उधर 19 वर्षीय सविता श्रेय भास्कर ने मंगोलिया के उलान बतूर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता ने अफरूजा खमदमोवा को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। सुनते हैं मैच के पहले दिन कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

महाराजा यादवेंद्र रिपीट महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले दिन खेल की समाप्ति तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में 41 के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल

0: 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर भारतीय टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया। सुदर्शन ने 104 गेंद में 13 चौकों की मदद से 81 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली। कप्तान ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर स्कोर 247 तक पहुंचा दिया। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली।
1: And that could be it. It will be it. Tucked into the gap. It's not going to go for four, but they're going to jog through for the brace. Brings up century number 12 in Test cricket.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और दिन के खेल की समाप्ति से पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खेल खत्म होने तक गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 148 गेंद में 121 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। गिल 143 गेंद में एक छक्के और 11 चौकों के साथ 103 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं।
1: He's been a class act as a skipper. He's been extremely consistent. The 11th century for Captain Shubman Gill.
0: पंत ने भी 70 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 50 रन बना लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान टीम के होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
0: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आईपीएल में जबरदस्त और विस्फोटक प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की होने से अब वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम की ओर से खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का शानदार मौका होगा। महिलाओं में शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड अगर हम इस समय बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 206 दिन की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वैभव के साथ साथ हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की भी टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी गई है, हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ी बात निराशाजनक जरूर है सूर्य कुमार यादव के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं ईशान किशन और शिवम दुबे की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे। उधर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, हालांकि एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। जी प्रशांत।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदाबाद में खेली जा रही वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के रोहन तायडे ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल कॉम्पिटिशन में यह कामयाबी हासिल की। मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
4: नमस्ते, मेरा नाम रोहन सुनील तायडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो आर्टिस्टिक सिंगल किया उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो मेरे घर पे बहुत ट्रेनिंग की थी और जो कैंप में मैंने एक महीना ट्रेनिंग की उससे भी बहुत मेरे को कुछ सीखने को मिला।
3: भारत ने इस वर्ल्ड क्लास योग कॉम्पिटिशन में 6 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। कल भारत की सब जूनियर लड़कों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की जूनियर लड़कियों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन बनाई रखी है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी अहमदाबाद।
2: और अब बात फ्रेंच ओपन

0: टेनिस टूर्नामेंट की फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में मीरा ने माया च्वालिन्स्का को 6-3 6-2 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में भी कल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के पास अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने का सुनहरा अवसर है। ज्वेरेव और कोबोली के बीच फाइनल रोमांचक होने की उम्मीद है। ज्वेरेव एटीपी हेड टू हेड सीरीज में कोबोली से 3-1 से आगे हैं। वे पिछले साल रोलैंग गैरो में तीसरे राउंड में खेले थे, जब ज्वेरेव ने 6-2 7-6 6-1 से जीत हासिल की थी। 29 साल के ज्वेरेव का बड़े टूर्नामेंटों में शानदार रिकॉर्ड है। वे 2020 US ओपन और पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे और 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में सिर्फ एक सेट दूर रह गए। वहीं ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कोबोली को मैटियो अर्नाल्डी की बीमारी की वजह से मैच से हटने से फाइनल का टिकट मिला। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में चेक स्टार जैकब मेंसिक को 4 सेट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। 3 घंटे 1 मिनट चले मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को पेरिस के कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 7-5 6-2 3 6 6-3 से हराया। ज्वेरेव दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे। विशेष शुक्ला स्पोर्ट्स के।
0: और अब बात फुटबॉल की। गोवा के मडगांव में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6th खिताब अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। जापान के काकामिगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए, कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। वहीं अंडर 18 लड़कियों की भारतीय टीम ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार से वापसी करने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 मिनट में ही बढ़त बना ली। संदीपा कुमारी ने दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए।

0: आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है. मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी.
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है. किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया. 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी

0: एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard,